0: कई बार ना लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है कि जो किडनी स्टोन है और जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है, यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी होती है, वो एक ही समझती हैं। तो इनमें कितना का डिफरेंस है, ये कैसे बनती हैं?
1: नहीं मैम, देखो दोनों जो है बहुत ही अलग अलग है। जो हमारी किडनी की स्टोन है उसमें 3 से 4 तरह के अलग अलग स्टोन होते हैं। सबसे उसमें जो सबसे कॉमन है वो है कैल्शियम के स्टोन,
0: जी
1: जो कि बहुत ज्यादा हार्ड शेप में होते हैं। और दूसरे जो होते हैं इसमें वो होते हैं ऑक्सैलेट्स के स्टोन, जो कि हमारे ज्यादा हरी सब्जियों को खाने के साथ और कैल्शियम का इंटेक दोनों एक साथ करने की वजह से तैयार होते हैं।
0: जी
1: और इसी तरह एक जिन लोगों को ज्यादातर लाइफ में यूरिक एसिड की समस्या रहती है उनको यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं।
0: जी
1: ये तो 3 तरह के बन जाते हैं हमारे किडनी में स्टोन। इसी तरह बात अगर हम करें कि पित्त की थैली में, मतलब पित्त की पथरी की, तो वो भी 3 से 4 तरह के होते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कैल्शियम का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का, और दूसरा उसमें जो होता है हमारे जो गॉल ब्लैडर के जूस होते हैं जिनको हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं उनका, और एक होता है जिसमें ये दोनों तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है उसमें कैल्शियम भी आ जाता है। ये उन लोगों को होता है जो हाई कैल्शियम डाइट खाते हैं पर साथ में वर्कआउट कुछ भी नहीं करते।
0: जी
1: जी मैम,
0: जी तो मतलब बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां खाने से या फिर प्रोटीन कैल्शियम जो है लेने से भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
1: आ जाती है मैम। एक्चुअली क्या है कि हर चीज की शरीर में जरूरत एक लिमिट तक है।
0: जी जी बिल्कुल
1: हम क्या आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, लोग जो हरी सब्जी खा रहे हैं वो दिन में 3 बार हरी सब्जी खा रहे हैं, और जो वो मतलब अपने मिल्क प्रोडक्ट ले रहा है वो दिन में 3 बार भी ले रहा है।
0: जी
1: हमें अपनी बैलेंस डाइट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उस वजह से हमें सबसे ज्यादा ये दिक्कतें आ रही हैं।
0: जी जी बिल्कुल सर, इस बारे में भी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बैलेंस्ड डाइट हमारी जो प्लेट है उसमें कितनी अकॉर्डिंग कितनी मात्रा में होनी चाहिए।
1: जी मैम,
0: जी
1: बहुत जरूरी है ये तो।
0: जी तो डॉक्टर कनव, जब भी कोई बीमारी होती है उसके अर्ली स्टेज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो ये पथरी की समस्या है, इस जब ये होती है तो इसके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह हो सकते हैं, कैसे संकेत हमारी बॉडी को मिलते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को ना स्टमक में नॉर्मल पेन होती है, कई बार वो इसको अनगहली कर देते हैं या फिर गैस प्रॉब्लम समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अर्ली स्टेज के इसके सिम्टम्स हम क्या मान सकते हैं?
1: सबसे मतलब कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है बाथरूम में जलन होना।
0: जी
1: बहुत से लोगों को बाथरूम में जलन होती है और बार बार होती है, जैसे 10 दिन के बाद, 15 दिन या 1 महीने के बाद फिर वो दोबारा दिक्कत आती है। तो वो लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं सिंपल इन्फेक्शन समझ के। लेकिन जब वही इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म तक चलता है तो वो एक तरह से इसको किडनी स्टोन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर देता है।
0: जी
1: और दूसरा होता है कि लोग जब यूरिन का प्रेशर आया होता है, मतलब बाथरूम का वेग आ रहा है और हम उसको होल्ड करके रख लेते हैं, तो उससे भी जो है हमारे इसमें जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाता है, वो आगे जाके पथरी में बन जाएगा।
0: बन जाते हैं। जी जी जी
1: जी
0: ये
1: फिर
0: छोटी
1: इसमें एक किसी किसी को जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो लोगों को बहुत मतलब 10 से 15% लोगों को बाथरूम में खून आता है,
0: जी
1: वो भी एक तरह से किडनी स्टोन का ही एक सिम्टम है।
0: जी जी सर
1: लोग उसको सिंपल इन्फेक्शन समझ के इग्नोर कर देते हैं। जी,
0: जी तो सर, जब भी कोई बीमारी होती है तो प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर माना जाता है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही हम अपना ख्याल रखना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक जो वो बीमारी है वो आगे जाके नहीं बढ़ती। क्या पथरी से
1: नहीं बिल्कुल
0: जी क्या पथरी से पूरी तरह बचाव कर सकते हैं हम? कुछ ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई आदतें जो हमें अपनानी चाहिए?
1: बिल्कुल मैम, पथरी से बचाव 100% संभव है। सबसे पहले तो हमें दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए।
0: जी
1: फिर दूसरा, हमें जितना हो सके चाय या कॉफी इसका यूज कम से कम करना चाहिए, और सबसे ज्यादा

0: जरूरी, जैसे आजकल जो है गर्मियों का मौसम है तो इसमें हमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल जैसे हम गर्म इससे निकल के जा रहे हैं, मान लीजिए गर्मी से एकदम ठंडे एरिया में जा रहे हैं और हम तुरंत कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। और हमें ज्यादा तेज नमक नहीं खाना है।
1: जी
0: और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें सारी डाइट को सही ढंग से खाना है। एक बार हमें कैल्शियम की डाइट खानी है, एक बार हमें प्रोटीन की डाइट खानी है, तो एक बार हमें मिक्स डाइट खानी है
1: जी जी
0: जी।
1: सर
0: और
1: आपने
0: सबसे ज्यादा जरूरी है मैम कि हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है,
1: जी
0: और एक्सरसाइज इतनी जिससे कि हमारा शरीर भी ना थके और हमारा शरीर जो है प्रॉपरली वर्क भी करे।
1: जी सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ों को कि इसके जो अर्ली स्टेज के सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर जो मेडिसिन है उसके बारे में तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि हम ना घरेलू जो नुस्खे हैं वो अपनाते हैं, तो पथरी को कम करने के लिए या इसकी समस्या को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका इलाज हम घर में भी कर सकते हैं अपना के?
0: सबसे अच्छा तो मैम घरेलू नुस्खा है नींबू का पानी।
1: जी
0: जो आदमी डेली एक गिलास नींबू पानी पीता है उसको पथरी होने की संभावना कम से कम हो जाती है।
1: जी
0: आजकल तरबूज बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस मौसम में, तो हम अगर जो इंसान डेली तरबूज खाएगा उसको भी पथरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी जी मैं आपसे यही क्वेश्चन अभी पूछने वाली थी, जैसे आपने तरबूज का नाम लिया, कई बार हम बीज वाली ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर मना कर देते हैं या फिर अमरूद मना कर देते हैं, ऐसे फल हैं जो बीज वाली चीज़ें हैं उनको खाने से भी पथरी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं?
0: हाँ जी, बीज वाली चीज़ें वो नहीं खानी है जिनके बीज आपके पेट में जाके डाइजेस्ट ही ना हो।
1: जी
0: तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, इन दोनों के जो बीज हैं वो इजीली हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं।
1: जी जी जी
0: और वो ठंडे होने की वजह से हमारे लिए हेल्दी होते हैं। जी
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो इसमें मैम सेब का सिरका बहुत अच्छा काम करता है हमारे लिए।
1: ओके
0: अगर कोई इंसान हफ्ते में एक बार सेब का सिरका आधा कप पानी मिला के उसको सुबह खाली पेट पिए तो उसको भी पथरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
1: जी
0: जी
1: जी तो सर अक्सर लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि जब पथरी हो जाती है तो इसका मतलब है सीधा ऑपरेशन करवाना, क्या हर पथरी के लिए सर्जरी जरूरी होती है? कुछ केसेस में दवाइयाँ, ज्यादा पानी पीने जैसे आपने बता दिया है, पर जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है?
0: देखो ऐसा है कि हर पथरी में ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो किडनी स्टोन है वो भी 3 से 4 प्रकार की, गॉल ब्लैडर स्टोन है वो भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा है कि अब सारे स्टोन में ऑपरेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे स्टोन है जो सिर्फ सिंपल दवाई खाने से और प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो जाते हैं।
1: जी
0: जब कोई स्टोन हार्ड शेप में तैयार हो जाए और वो अपने मार्जिन फैलाना शुरू कर दे, वो शरीर के किसी ऑर्गन के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तब हमें उसको ऑपरेशन के लिए सुजेस्ट करना पड़ता है या हम पेशेंट को बोलते कि आप ऑपरेशन करवा ली।
1: जी
0: जी मैम
1: जी, तो डॉक्टर कनव अगर समय रहते हुए इसका इलाज ना करवाया जाए तो आगे जाने के बाद इन फ्यूचर हमारे पूरे शरीर में किस किस तरह की हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?
0: सबसे पहले तो मैम जब कोई पेशेंट है, जो बीपी का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है, अगर उसका टाइम से इलाज ना हो तो उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किडनी फेल होने के।
1: जी
0: और जो बीपी का पेशेंट है अगर उसको स्टोन का ट्रीटमेंट ना करें तो वो आगे जाके कार्डियक फेलियर में भी चला जा सकता है। जब उसमें वो कोई कॉम्प्लिकेशन, फिर जो लोग अस्थमेटिक हैं या जिनको ब्रेन में कोई दिक्कत है उनको सबसे ज्यादा खतरा है कि उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में वो लोग जा सकते हैं।
1: जी
0: जी
1: जी
0: और इसमें सबसे बड़ा कारण तो किडनी डैमेज होने का होता है।

0: जी, तो अच्छा यही है कि कोई भी बीमारी अगर हमें ये पता लगती है, अर्ली स्टेज के सिम्टम पता लगते हैं, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाएं हम।
1: जी मैम, बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके, चाहे उसके लिए आपको दवाई की जरूरत है तो दवाई का कोर्स करें, अगर दवाई से वो चीज ठीक नहीं हो रही है तो आप ऑपरेशन की तरफ जाएं।
0: डॉक्टर कनव, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जब कोई भी बीमारी से हम जूझते हैं, चाहे वो ठीक भी हो जाए, पर कुछ ऐसे जो सिम्टम्स थोड़े थोड़े हमारे शरीर में रहते हैं, क्या अगर एक बार पथरी ठीक हो जाए तो दोबारा पथरी बनने के चांसेस रहते हैं?
1: अगर मैम लाइफस्टाइल और डाइट चेंज ना करें तो वो चांसेस दोबारा बनेंगे, क्योंकि ये जो भी पथरी बन रही है वो हमारे डाइजेशन की वजह से, हमारे एक्सक्रीशन की वजह से और हमारे लाइफस्टाइल से उसको इन्वॉल्वमेंट होती है। मान लीजिए हमने खाना खाया और हम खाना खा के तुरंत बैठ गए,
0: जी
1: हमने अपने शरीर को वर्कआउट नहीं करवाया, तो जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा।
0: जी
1: जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड एज इट इज हमारे जूसेस के साथ मिलके गॉल ब्लैडर में जाएगा और उसमें गॉल ब्लैडर का जो जूस है उसको कम काम करने देगा।
0: जी
1: तो वो जो जूस जो अंदर बन रहा है वो बाहर नहीं निकल के अंदर ही रुका रहेगा। जब वो अंदर रुका रहेगा तो वो अंदर अपने शरीर की हीट से वो हार्ड शेप में तैयार हो जाएगा, जिससे कि वो दोबारा चांसेस हो जाते हैं कि वो चीजें बन जाए। ऐसे ही हमारे किडनी स्टोन की बात है, हम मान लीजिए कि पानी कम पी रहे हैं, हम डाइट अच्छी खा रहे हैं, पानी कम पीने की वजह से हमारा शरीर तो गंदगी को बाहर निकालने के लिए कचरे को इकट्ठा कर रहा है।
0: जी
1: अब हमारा पानी कम होने की वजह से वो कचरा बाहर ही नहीं निकलेगा तो वो दोबारा किडनी स्टोन को तैयार करने में कारण बन जाएगा।
0: जी जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब, और कई बार मैंने सुना है और ये देखा भी है कि जब देसी दवाइयाँ पथरी के इलाज के लिए दी जाती हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का मतलब बोलते हैं, या फिर सोडा जो है खारा वो पीने के लिए कहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी है उसमें ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान तो होगा, ये काफ़ी हद तक ठीक है या फिर मिथ है?
1: मैम ऐसा है कि अगर कोई किडनी पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, उसको खारा सोडे के साथ दवाई नहीं दी जाती है।
0: जी
1: और आयुर्वेद में या देसी दवाइयों में ऐसा होता है कि हर इंसान को एक जैसी दवाई नहीं दी जाती है।
0: जी जी जी।
1: और अगर हम वही बात करें कि एलोपैथी में, वहां पे कुछ हद तक ऐसा है कि कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद बोलता है कि हर इंसान की बनावट अलग है, तो हर इंसान की बनावट के हिसाब से उसके लिए दवाइयाँ अलग अलग है।
0: जी।
1: और रही बात जैसे आपने बोला खारा सोडा, आम जो कोई नॉर्मल इंसान है जिसको किडनी स्टोन है उसके लिए खारा सोडा बेस्ट काम करता है, क्योंकि वो जो यूरिन का फ्लो है उसको बढ़ा देता है।
0: जी।
1: जब यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, जो यूरिन की नालियां हैं वो थोड़ी डायलेट हो जाती हैं, तो उससे जो है स्टोन का छोटा मोटा कचरा इजीली बाहर निकल जाता है।
0: जी डॉक्टर कनव, आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये जो पथरी की जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहो हेल्थ के रिलेटेड?
1: सबसे अच्छा मैसेज तो ये है कि 8 से 10 गिलास पानी सभी पिए।
0: जी।
1: और इसमें सबसे अच्छा है हमारा बॉडी वेट के हिसाब से पानी पिए, 20 kg पे 1 लीटर पानी जरूरी है।
0: जी।
1: तो अपना अपना बॉडी वेट चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना पानी का एक सीमा सुनिश्चित करें।
0: जी।
1: दूसरा है कि अपनी डाइट पे ध्यान दें, जो आप 3 टाइम कैल्शियम की डाइट को अवॉइड करें, 3 टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड करें, 3 टाइम ही दालों को अवॉइड करें। आप सुबह कैल्शियम के प्रोडक्ट ले सकते हो, दोपहर को आप दाल ले सकते हो, शाम को आप हरी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी।
1: और सबसे ज्यादा जरूरी है मैम, शाम का खाना जितना जल्दी हो 7 से 8 बजे तक अपना डिनर कर ले।
0: बिल्कुल।
1: जो इंसान 8 बजे तक अपना डिनर कर लेता है उसको ये सब लाइफस्टाइल बीमारियां कम से कम होती हैं, क्योंकि उसका सारा सिस्टम ठीक रहता है।
0: जी।
1: और सबसे ज्यादा

0: जरूरी है कि जब भी खाना खाएं उसके बाद 100 से 200 कदम जरूर चलें। चाय और कॉफी का प्रयोग थोड़ा कम करें।
1: जी डॉक्टर कनव, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के आप हमारे साथ हमारे गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम में जुड़े और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर तीसरे पर्सन को, बच्चों को एटलीस्ट, मतलब ये बीमारी हमें देखने को मिल रही है।
0: मैम, गॉल ब्लैडर स्टोन का मेरे पास 1.5 साल का बच्चे का केस है चला हुआ।
1: 1.5 साल का सर? अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 1.5 साल के बच्चे को ये

0: टॉपिक पे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर तीसरे पर्सन को, बच्चों को एटलीस्ट, मतलब ये बीमारी हमें देखने को मिल रही है।
1: मैम, गॉल ब्लैडर स्टोन का मेरे पास 1.5 साल का बच्चे का केस है चला हुआ।
0: 1.5 साल का सर? अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 1.5 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई?
1: अब मैम, जब उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई तो उनकी काउंसलिंग में ये मिला है कि जो उसकी मदर है उनका ज्यादातर हैवी रिच डाइट खाने का रूटीन है,
0: जी
1: तो उनकी डाइट का इफेक्ट बच्चे के ऊपर जा रहा है। बच्चे का भी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है।
0: जी जी जी
1: हम आयुर्वेद में इस चीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं।
0: जी
1: जी
0: जी डॉक्टर कनव, बहुत बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया,
0: जी।
1: धन्यवाद।
0: हाँ जी दोस्तों, ये थे ए सी डॉक्टर कनव, जिन्होंने इन्नी इंपॉर्टेंट टॉपिक ते साडे नाल इनफॉर्मेशन सांझी कीती। देखो, उन्होंने जिन्निया भी चीज़ां दा सानू ध्यान रखने लिए किया है कि दिन दे विच 8 तो 10 गिलास आपां पानी पीना है, ते अपना जिहड़ा वेट है उसके अकॉर्डिंग पानी पीना है, ते नाल ही जिहड़ियां आपां विदाउट नॉलेज चीज़ा खाते हैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के विच, लंच के विच, डिनर के विच। इंडियंस की ये चीज़ मैं वेखी है कि रात को 9-10 बजे तक साडा जिहड़ा डिनर है वह चलता रहिंदा है, ते आपां प्रॉपर जिहड़ा है अपना पेट फुल करके खाते हैं, लेकिन रात को सानू हल्का खाना खाना चाहिए है, तो जल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो आप रात को लेट नाइट खाना खाते हैं या फिर कोई भी इदा की चीज़ है जो वो खा लेंगे, तो साड़ी जी शरीर है, साड़ा जो शरीर है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। असी अपने बॉडी नू प्यार करते हैं, इहदा ख्याल रखना साड़ी जिम्मेवारी है। उम्मीद करती हाँ जी स्टोन प्रॉब्लम जे तुहानू है या तुहाडे परिवार विच किसी मैंबर नू है, अज का यह इंटरव्यू डॉक्टर कनव दे नाल बहुत ज़्यादा तुहाडे सारिया दे लई यूजफुल रहा होवेगा।

जी दोस्तों, मजा आया गाना सुन के। नचे टप्पे जा नहीं, कोई गल नहीं जी, हजे भी तुसी नहीं नचे टप्पे, फिर बहुत सारे साढ़े कोल इदां दे इंस्ट्रूमेंट ने जिन्हां दी अज आपां गल करांगे। हुण जिहड़ी धुन हैगी है, जिहड़ी रिदम है, हुण जिहड़ी मैं तुहानूं सुनाउण लगी हाँ, तुसी सानूं वट्सअप मैसेज ते दसना है कि इह किहड़ा पंजाबी जिहड़ा फोक आपां कह सकदे इंस्ट्रूमेंट या साज़ है। ठीक है, पहलां तां तुसी इह ट्यून सुनो।

0: मैडम
1: वाह
0: जी, ये पहचाने कौन से स्टेट से गाना आया है? थैंक यू
1: लॉ
0: मैडम
1: जी,
0: जी,
1: लॉ
0: नमस्कार।
1: जी। आज जिहड़े नरेश जी ने सानू एक खूबसूरत अंदाज दे विच जिहड़ा साज वजा के सानू सुनाया सारिआं नूं, इन्हां ने लास्ट दे विच किहा है कि ये तुहाडे वास्ते एक सवाल ही है कि किहड़े स्टेट तों इन्हां ने सानू मैसेज कीता है। ओहो, जिहड़ा सब तों पहला सानू मैसेज आया सी, जिन्हां ने कहा सी कि इदां दी कोई इनफॉर्मेशन है जिहड़ी साडे नाल सांझा कीती जानी चाहीदी करियर दे रिलेटेड। वैसे मैं कहिंदी हां कि बहुत सारे इदां दे सारे प्रोग्राम ने, हुण गुड मॉर्निंग जलंधर जिहड़ा प्रोग्राम है, इन्फो टाइम्स प्रोग्राम हो गए, टाइम टू टाइम सारे प्रोग्राम च आपां कुछ ना कुछ इनफॉर्मेटिव जिहड़ी चीज़

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन किता है तुसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी लाइव फोन इन प्रोग्राम पंजाबी तड़का जिथे थोड़े पसंद दे पंजाबी फरमाइशी गीत जड़े ने इस प्रोग्राम दे विच शामिल किते जांदे ने ते प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल किदा होने ने अपने गीत किदा शामिल करने ने ओदे लई साडा नंबर है जी 0181 23 42 174 यानी कि 0181 23 42 174 है साडा नंबर है ते नंबर मिला के साडे अगले कॉलर दोस्त प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने करदे उहनां नाल गलबात नमस्कार जी सत श्री अकाल
1: हेलो मैडम जी सत श्री अकाल जी ते नमस्कार जी
0: कौन बोल रहे हो जी तुसी
1: मैडम जी सन्नी भगत बोल रहे जी भारत कैंप जलंधर तो
0: जी सनी जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे विच
1: मैडम जी ताडा ही बहुत बहुत स्वागत जी पार्को कैंप विच जी
0: हां जी जी होर की हाल चाल ने
1: बस वधिया मैडम जी बाबा जी दी कृपा जी काम करंदे आ
0: ठीक है
1: प्रोग्राम ताडा सुनंदे आ जी
0: अच्छा जी ठीक है जी ते फिर गर्मी दे मौसम दे विच कामकार ठीक चल रहे ने
1: हां जी मैडम जी कामकार बहुत वधिया चल रहा है ते नाल नाल पानी भी पाईदा है अपने डोगियां नु हो गया
0: पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते हो इस गर्मी के मौसम बेजुबाना भी काम कर रहे हो बहुत ही वधिया गल है हां जी हां जी तो फिर अज केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो अच्छा जी किदे मतलब दी गल करनी है तुसी इस गीत राही प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई ते गुरदास मान जी दी आवाज दे विच गल तेरे मतलब दी गाना प्ले कर रही हां जी

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: यूनियन कितना होया जी तुसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी तड़का लाइव फोन इन प्रोग्राम है ते तुसी भी अपनी फरमाइश ते पंजाबी गीत जड़े ने इस प्रोग्राम दे विच शामिल करवा सकते हो ते साडे कॉलर दोस्त फटाफट सानू कॉल्स कर रहे ने करदे उहनां नाल गलबात। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। अच्छा जी,
1: पढ़ लिख के विद्वान बनोगे, एक वधिया इंसान बनोगे, कीड़े मकौड़े ना मारो, करो तुसी सोहणी जिही लिखाई, आओ बच्चे उस स्कूल दे विच करो तुसी पढ़ाई, तां की होया जे फीस तुहाडी दो तीन महीने तो नहीं आई। थैंक यू धन्नवाद मैडम जी, प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत ही वधिया कविता सुनाई है, कौन बोल रहे हो जी तुसी?
1: जी मैं जे एस मुल्तानी जलंधर तो बोलदा मैम।
0: जी जे एस मुल्तानी जी, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे विच।
1: जी मैम थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है जी, तुसी साडे स्कूल दे विच पहुंचे हो मोबाइल दे जरिए।
0: अच्छा जी, तो फिर स्कूल च छुट्टियां नहीं चल रही, थोड़े पढ़ाई चल रही है हले भी?
1: छुट्टियां चल रही है जी, बच्चियां नु छुट्टियां होंगे, स्टाफ नु बुलाया होया।
0: अच्छा जी,
1: 15 दिन दी सानू छुट्टियां मिलनियां ने।
0: अच्छा जी,
1: अद्धा स्टाफ आया होया, अद्धा स्टाफ फिर बाद जाऊंगा, फिर अभी छुट्टियां करनी है।
0: अच्छा जी, बहुत ही वधिया, चलो 15 दिन दी छुट्टियां ते मिल ही रही है ना
1: जी। मैम जी
0: जी, ते फिर आज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो तुसी जी?
1: जी मैम तुसी बीच में लो सुनाओ जी, हैप्पी राय कोटी जी दा सपने।
0: हैप्पी राय कोटी जी दा सपने गाना, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुल्तानी साहब थोड़ा प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई, ते थोड़ी फरमाइश ते गीत आ रहा है जी थोड़े रेडियो सेट ते।
1: जी

आएंगे, सफलता के गगन छूकर धरा पर लौट आएंगे, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे। अगला गीत हमराज मूवी तो महेंद्र कपूर की आवाज़ के विच आर्या जी तुहाडे रेडियो सेट ते दही ट्यून इन करके रखो 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ का एक खूबसूरत जहा सफ़र इदा ही चलता रहेगा।

तेरे प्यार का क्या हिसाब तुम, तेरे प्यार का क्या हिसाब तुम, तेरी मोहब्बत को क्या खिताब तुम। कोई अच्छा सा फूल होता, कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें ज़रूर पेश करता, मगर जो खुद ही गुलाब हो उसे क्या गुलाब दूँ। मेरी शायरी सुन के अंदाज़ा तो तुहानूं हो ही गया कि प्रोग्राम दिल आज शायर की शुरुआत हो चुकी है। मैं हाँ जी तुहाडी आर जे दोस्त सुरभी, प्रोग्राम विच अज दिल दिया गल्लां शायरी दे रूप विच करन एक बार फिर तो आ गई हाँ। दोस्तों, कई बार जिंदगी विच कुछ ऐसे पल आउंदे ने जदों ना दिल दे अंदर बहुत कुछ चल रहा हुंदा है। कदे कोई याद, कदे कोई अधूरी ख्वाहिश, कदे किसी दी मुहब्बत ते कदे किसी दा विछोड़ा। अजिहे पलां दे विच दिल गल्लां नहीं करता, शायरी करदा है। सो तां ही कहंदे ना कि दिल दी ना अपनी एक भाषा हुंदी है। ए ना किसी किताब विच मिलदी है ते ना किसी स्कूल दे विच सिखाई जांदी है। ए तां तजर्बियां, जज्बातां अते यादां तों बणदी है। सो दो लाइनां इत्थे मैं होर कहना चाहूँगी कि कुछ गल्लां अज भी अधूरियां ने, कुछ गल्लां अज भी अधूरियां ने, कुछ सुपने अज भी जिंदा ने। दिल अज शायर इसलिए है क्योंकि कुछ जज्बात अजे भी जिंदा ने। सो प्रोग्राम दे विच मेरी शेरो शायरी तो चलती रहेगी, पर कल्ली मेरी शेरो शायरी ना कुछ नहीं बनना, इहदे लई तुहानूं मेरा साथ देना पैना। ये साथ किद्दां दवोगे तुसीं मेरा? अपनी दिल दियां गल्लां, अपने जज्बात शायरी दे रूप विच तुसीं मैनूं भेजोगे। ते भेजनी किहदे च है? नंबर है जी व्हाट्सएप दा 9855 10 10 27। ये व्हाट्सएप नंबर है 9855 1010027। मैनू इस नंबर ते तुसीं अपनी शायरी भेजनी है। और याद रखियो कि जे ये शायरी तुहाडी अपनी है ते तुसीं खुद लिखी है ते बहुत वधिया गल है, इहनूं पढ़ के मैनू भी बहुत मज़ा आएगा। अगर तुसीं किसी होर दी शायरी मैनूं भेज रहे हो ना, ते इस गल दा ध्यान रखियो कि उन्हां दा भी नाम ज़रूर जिहड़ा है तुसीं ओह मैनशन करो। और ये भी ध्यान रखो कि असीं पॉजिटिव पॉजिटिव गल्लां करिए, प्यार दियां गल्लां करिए, ते कोई शायरी दे जरिए अपनी दिल दी गल कहना बड़ा वधिया हुंदा है ना। ते इह मौका अपनी दिल दी गल शायरी दे रूप विच तुसीं कर सकते हो। मैं हाँ तुहाडी दोस्त आर जे सुरभी, ते हुण इंतज़ार करूँगी तुहाडा, तुहाडे मैसेजिस दा, तुहाडी शायरी दा। इस गज़ल तो बाद फिर पेश करांगी तुहाडियां लिखियां लिखियां प्यारी प्यारी शायरियां।

एक बार फिर तो सब दा स्वागत है जी प्रोग्राम दिल आज शेयर है। मैं हाँ थोड़ी यार जे दोस्त सुरभी। सो प्रोग्राम विच मेरे लिसनर्स ने आज शेयर बन के अपनी शायरी भेजनी शुरू कर दी है, तो मैं भी बिना देर किते इसनों पेश करती हाँ। कहिंदे ने वे सजना तेनू तक तक रूह ना भर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तपती धूप, बढ़ता तापमान और बदलती खान पान की आदतें, ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और भूख कम लगना जैसी समस्याएं इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में यूनानी चिकित्सा

0: गति किस तरह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत शुक्रिया आपका।
0: और साथ हैं डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिंस, CGHS। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें आपने याद किया।
0: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर अपने विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं?
1: असल में सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खान पान और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से। आमतौर से होता क्या है कि गर्मियों में जो है बहुत जल्दी खाना जो है हमारा अगर बासी हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। मुख्तसर यह है कि हमें इससे बचना चाहिए। एक तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, घी तेल, वो कम इस्तेमाल किया जाए। और बाहर के जो हैं, जो भी आदमी घर से निकला है, उसको ज़रूरत पेश आई, भूख लगी, तो देख ले कि खाना सही है या नहीं सही जगह है। कम खाए लेकिन ताज़ा और सादा खाना खाए, इसकी खास कोशिश की जाए।
0: तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो साथ लेके अपने चल सकते हैं कि अगर हम बाहर का खाना ना खाना चाहें जनरल में वो ले सकते हो?
1: देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारे यानी नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से चना और जौ का सत्तू जो है बहुत मशहूर है, और पानी आम तौर से हर जगह मिल जाता है, या फिर पानी भी साथ लेके चले तो आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये इस सीज़न की बहुत बढ़िया यानी ग़िज़ा है, कह लीजिए न्यूट्रिशनल चीज़ है ये। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि बॉडी के अंदर जो इस वक्त जो मौसम है वो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क है, तो ये जो है शरीर को तरी पैदा करता है।
0: जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सूफी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी पेट संबंधी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं?
2: आजकल तो गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें लूज मोशन का है, गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा उनको डायरिया हो गया एंड लूज मोशन होते हैं, उस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी या पानी नहीं लेते हैं या इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। तो इस टाइप के ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको गर्मी की वजह से लूज मोशन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग इस टाइप से हमारे पास आते हैं, और उनको पानी और ORS नेबर लेमन वगैरह इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको आप पानी में लीजिए, पुदीना लीजिए, सारी चीज़ों को लीजिए, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं, पुदीने का पानी होता है, अजवाइन का होता है, ये सब चीज़ें हम उनको ऐड करके देते हैं
0: जिससे गर्मी में ठंडक का एहसास रहे,
2: ठंडक का एहसास हो।
0: जी, इसमें हम बात ये भी करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है।
1: यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी, इस एक साइंटिफिक बेस पर इसको हकीम बकरात ने, जिन्हें हिप्पोक्रेट भी कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि पहले से चल रही, प्रचलन तो बहुत पहले से रहा, लेकिन उन्होंने बाकायदे उसको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ख़ास तौर से उन्होंने खिलत और मिजाज। तो वो कहते हैं इसका बैलेंस अगर रहता है तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, और जब ये डिसबैलेंस होते हैं चारों खिलत और मिजाज, तब जो है जाके तकलीफ बढ़ती है। जाहिर है गर्मियों का सीज़न है, इसमें उमूमन जो है खुश्की और गर्मी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं। तो इस लिहाज से हुक्मा इसके यानी जो ख़ास तवज्जो दिया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके लिए उन्होंने माना है कि अगर जिगर हमारा सही काम कर रहा है, लीवर, तो समझिए कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो लीवर से संबंधित जो दवाएं हमारे पास में हैं वो बहुत यानी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे क्लासिकल दवाएं हैं, जैसे माजून दबिलवर्द है, जवारिश नारायण है, जवारिश आमला है, ये सब दवाएं बहुत सारी जिगर की हैं जो काबिज़ भी हैं, यानी जैसे किसी को डायरिया हो गई या डिसेंट्री हो गई तो उसमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर से जवारिश नारायण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से जो है इसमें चहार तुख्म का भी इस्तेमाल होता है। चहार तुख्म जो होता है, चार किस्म का बीज होता है, जिसमें यह है कि तुख्म बारतंग है, तुख्म रेहान तुलसी का बीज, इसब गोल मुसल्लम और तुख्म कनौज। तो चारों बीज एक साथ जो है जमा करके किसी को भी पेट में गर्मी है, दस्त है, मरोड़ है, आईबीएस की शिकायत है, उन सूरतों में जो है हम इसे इस्तेमाल कराते हैं। सादे पानी से एक चमचा निगल लिया। इसके अलावा जो है हुक्मा ये मान के चलते हैं कि ये इन्फेक्शन में

0: काम करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि डिसेंट्री हो गई, इन्फेक्शन के सबब हुई है, तो उसमें हम जो है अर्क अजीब भी देते हैं। अर्क अजीब जो है ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो है सत्य पुदीना है, सत्य अजवाइन है और सत्य काफूर,
1: काफूर है।
0: इन तीनों को बराबर बराबर मिला लेते हैं, एक बेहतरीन घोल तैयार हो जाता है। इसकी 2 बूंद आधे कप पानी में पी लीजिए, तो इससे आपको फौरी तौर पर एक यानी जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, उन सब में काम करेगा।
1: तो ये रोज़मर्रा में ले सकते हैं या तकलीफ़ हो तभी इसका
0: बेहतर है
1: इस्तेमाल
0: कि
1: करना
0: तकलीफ़ हो
1: है?
0: तो लें,
1: जी
0: चूँकि जाहिर दवा का मतलब है, दवा और ग़ज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं।
1: जी
0: तो इलाज बिल ग़ज़ा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि ऐसे वक्त में हम वो चीज़ खाएं जिससे दवा की ज़रूरत है पेश आए। तो जाहिर है कि दवा जो है जब ज़रूरत हो तो भी ली जाए।
1: तो दर्द में ही दवा ले, लेकिन रोज़मर्रा में जो ये गर्मी है इससे बचने के लिए हम क्या करें कि जिसे बीमारी ना पड़े?
0: हाँ, इसके लिए तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है, आम आदमी जानता है कि सादा खाओ और ताज़ा खाओ और कम घी तेल और मसाला इस्तेमाल करो। मौसम के जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, चूँकि कुदरत ने जो हमारे लिए एक वरदान के तौर पर कह लीजिए, हर सीज़न में ज़रूरत के मुताबिक सब चीज़ें पैदा होती हैं। अब जैसे आजकल खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीज़ें हैं बदन को तर रखने के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मतलब है कि ये सब चीज़ें नहीं दस्तियाब होती, जैसे आम मान लीजिए है, आम बहुत बड़ी नेमत इस वक्त है
1: जी
0: कि किसी गर्मी लग गई, लू लग गया हो, पेट में कोई ख़राबी आ गई है, तो वो आम का पन्ना इस्तेमाल करें, आम को उबाला, कैरी को,
1: जी
0: और उबालने के बाद उसके गूदे को जो है पानी और चीनी नमक मिला करके इस्तेमाल कर सकता है इंसान। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी मत मिलाएं, हल्का नमक मिला लिया करें।
1: तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है, आम का ऑल्टरनेटिव भी कुछ और है?
0: हाँ, जाहिर है कि उनके लिए तो यही चीज़ है, लेकिन इसमें चीनी मत मिलाएं, वो थोड़ा टेस्ट से परहेज रखें, नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कुदरत ने हमें हर सीज़न के लिहाज से चीज़ें दी हुई हैं, और उसी का हम इस्तेमाल पहले करें ताकि हम दवा से बच सकें।
1: एहतियात बरतने के बाद भी अगर किसी को अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या आती है तो उसके लिए यूनानी उपचार कैसे किया जाता है? डॉक्टर सूफिया से हम जानना चाहेंगे।
2: पहली बात तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में, जैसा कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा मसाले, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे यूनानी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा हम असर करती हैं। जैसे पुदीने का एक पेस्ट आता है, जवारिश पुदीना जैसे बोलते हैं, जवारिश तमर हिंदी आती है, वो सब ठंडी दवाइयाँ जो पेट को बहुत अच्छा वो करती हैं। शरबत में जैसे गुड़हल का शरबत है, शरबत बेलगिरी बहुत अच्छी है, आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, शरबत की तरह पी सकते हैं उसको, और शरबत अनार भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। बस ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में कि गर्मी की वजह से जो जो चीज़ें हमें ज़्यादा हार्म कर रही हैं, बहुत मिर्च है, मसाला है, बाहर की बहुत सारी चीज़ें, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से लोग बनाते हैं, कितने वक्त रखते हैं, फ्रोज़न फूड अवॉइड करना चाहिए। मेरे समझ से इन चीज़ों के लिए हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है।
1: तो जो जो आपने शरबत बताई, क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं?
2: शरबत बेलगिरी है, शरबत अनार है, ये बराबर आप ले सकते
1: तो ये
2: हैं।
1: सभी लोग ले सकते हैं या शुगर पेशेंट्स या बच्चों के
2: शुगर
1: लिए
2: शुगर
1: कुछ
2: फ्री तो इसमें
1: मेडिसिन?
2: शायद नहीं है, अभी बच्चे ले सकते हैं, जो जिसको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करे। वो कुछ और चीज़ें जैसे पुदीना है, लेमन है, नमक है, ज़ीरा भुना हुआ डाल के कुछ एक ड्रिंक बना ले, वो ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा उसको कोल्ड करके लिया जा सकता है। गोंद कतीरा का भी बहुत अच्छा इस वक्त इफ़ेक्ट आ रहा है। तुक मलंगा का भी बहुत अच्छा है, उसको भी मिक्स करते हैं भिगो के 4-6 घंटे, उसके बाद उसको आप पानी में मिक्स करके उसको, उसमें पुदीना है, थोड़ा सा लेमन है, ये डाल के आप इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट जो हैं वो नमक का यूज़ कर रहे हैं, काला नमक का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं उसको, है ना?
1: गर्मी के मौसम में पुदीना, नींबू सुनने में इतना अच्छा लग रहा, तो लेने में और भी आनंदमय
2: जी जी
1: रहेगा।
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर सैयद, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर भी, अगर कोई, जैसे आपने बार बार कहा कि जंक फूड ना लेकर फिर भी किसी को ने अगर खा लिया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए यूनानी चिकित्सा क्या सलाह देगा? क्योंकि
0: उनके
1: आजकल मौसम
0: लिए
1: ऐसे, ट्रैवल भी कर रहे हैं लोग।
0: बिल्कुल सही है। अव्वल तो हमने बताया कि घर

0: घरेलू तौर पर जो हम अपने साथ रख सकते हैं, जो चीज़ें ख़राब ना हों, उसमें ख़ास तौर से चने और जौ का सत्तू जो है वो नंबर एक पर है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हो ही गया है, तकलीफ़ आ गई, तो एक तो हमने बताया अरक अजीब का इस्तेमाल है, दो बूंद अरक जो है आधे कप पानी एक कप पानी में लेकर के पी लिया, उससे फौरी तौर पर उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। इसके अलावा यह है कि डिहाइड्रेशन अगर वाकई हो ही गया है, उसे चाहिए कि अपने करीब के किसी हॉस्पिटल से रुजू करें वो, चूँकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए वो आदमी जो है डिहाइड्रेशन बचे उस पर हम ख़ास ध्यान देते हैं। और ये जो ORS वगैरह का बताया गया है, धीरे धीरे करके सिप करके पिएं, एक बैग बहुत ज़्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करें, या जो कोई भी शरबत हो तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जाए, तो वो जो है डाइजेस्ट होकर के फिर हमें जो कमी पानी की है वो पूरी होती रहेगी। तो ये असल में ज़रूरी है कि उपचार तो उपचार है, इलाज में जल्दबाजी नहीं, और उसमें उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि जो ज़रूरत पेश आई। अब किसी को डायरिया और वोमिटिंग दोनों है, तो उसमें पहले मरहले में एक तो अरकजीत दे दिया, फिर जवारिश पुदीना आता है, जवारिश पुदीना विलायती कहलाता है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। ऊपर से फिर हम ये शरबत जो है आपका अनारायण कहा है, शरबत अनार के नाम जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो है हब्बे पेच के नाम दवा आती है हमारी, जो यूनानी दवाएं हैं, तो उसमें एक गोली दे दिया या हब्बे सुमाक दे दिया, इस तरह कोई चीज़ आती है दवाएं हमारी यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिंस हैं, जनरल मेडिसिंस कहलाती हैं, ये हर जगह मिल जाती है आराम से, तो इसका भी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में है इस वक्त, क्या कैफियत उसकी है, उसको फौरन हम हॉस्पिटलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें, तो उसकी कैफियत देखने पता लगे कंडीशन क्या उसकी है। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज़ धूप लग गई, सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक है, घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया, और उसमें आज के सीज़न में ये जो पना आम का जो बताया कि कैरी को उबाल करके उसका गुदा निकाल करके चीनी पानी का घोल बना करके पिला रहे हैं उसे, ORS की सूरत में भी हम दे सकते हैं, ये सब बातें हैं खैर। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा उपचार चाहिए, तो हम उसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें, ये भी एक इलाज का बड़ा हिस्सा है और बड़ी समझदारी की बात होती है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
0: जी
1: हेलो
2: जी, पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। दोनों
1: जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: डॉक्टर साहिबान को मेरा सलाम पहुँचे।
1: जी,
0: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।
2: हमारे यहाँ यूनानी में अर्क चिकित्सा का बड़ा महत्व है।
0: जी जी
2: मैंने
0: बिल्कुल
2: सुना है
0: सही।
2: कि अर्क मकोए बहुत सारे अर्क जो हैं बहुत कारगर हैं, तो कृपया अर्क के बारे में बड़े तफसील से बताएं। थैंक यू।
0: देखिए अरक जो है ये आम तौर से हम उस वक्त देते हैं जब महसूस हो कि जिगर में सूजन है या जिगर बढ़ गया है, तो उस सूरत में जो अरक मको है, अरक कासनी है, अरक ब्रंजासफ है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और अगर ये लगता है कि गैस वैस ज़्यादा बन रही है, तो उसमें अरक अजवाइन को बढ़ा देते हैं। और
3: फैटी लीवर में भी देते
0: जी
3: हैं।
0: जी तो ऐसे कैफियत में जो है, बहरहाल ये जानना ज़रूरी है कि अरक का इस्तेमाल कौन कौन से एक साथ किए जाएं। तो ये जो तीन अरक हमने बताए हैं शुरू में, ये तमाम सारे फैटी लीवर हो या लीवर एनलार्ज हो या और कोई कैफियत है तो, या सूजन आंतों में हो बड़ी में, तब भी देते हैं हम इसे। तो चूंकि इसका असली काम जो है स्वेलिंग को कम करना है और फैट को डिजॉल्व करना भी है,

0: इसीलिए फैटी लिवर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो ख़ास तौर से अगर एक साथ हम चार अरक इस्तेमाल करें, क्रासनी, अर्क मको, अर्क बादियान और अर्क ब्रंजासर, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। इसको कम से कम यह है 15 ml ईच सभी को जो है, चूंकि तफसीर से जानना चाह रहे हैं वो कि हम अरकियात के बारे में, जो अरक का महत्व तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पूछा, बताया, समझा भी है, और जाहिर है कि ये अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें जो है एक कप में हम सभी में से 15 15 ml जो है, यानी चार चार ढक्कन कह लीजिए, जो बोतल का ढक्कन होता है वो भी एक पैमाना है उसका नापने का, तो उसे चार चार करके एक कप में रख लिया और एक साथ मिलाकर पी लिया। अगर अरक को हम खाली पेट पिए अजवाइन के अलावा तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। जीरे का अरक भी होता है, जीरे का अरक हम देते हैं सुबह नाश्ता के पहले सफ़ूफ मुहज़्ज़िल के साथ, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, फैट ज़्यादा हो, उसे कम करने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, और ये बहुत ही मशहूर क्लासिकल मेडिसिन है ये। तो हर जो अरक हैं, अरक नाना जैसे जिक्र किया हमने, अब आजकल सीज़न में गर्मी है, इसमें हम अरक नाना मतलब कहते हैं पुदीना का अरक, यानी पानी एक तरह का, तो उसे जो है जब हम कशीद करके बोतल में रखते हैं तो उसे अरक बोलते हैं। अरक का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो है रूह को कशीद कर दिया, वो सब चीज़ें उसमें आ गई, और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव होता है, बहुत ज़्यादा नहीं एब्जॉर्बल होता है, बॉडी के अंदर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, खाना कमाल नहीं है, उसे कहते हैं पचाना कमाल। पचाने से मतलब यही होता है वो चीज़ जो है एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है, तो ये बड़ा अहम मामला होता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो भी अरक इस्तेमाल करें उसमें ये जानना चाहिए कौन सा किसके लिए है और कब लिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली निकल चुकी है और जब से मुझे एसिड और गैस बहुत बनती है, और अब तो एक काम और हो रहा है, अगर मैं ठंडा या बासी खाने से पेट फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और टमाटर और अचार खाने से पेट में दर्द होने लगता है, और नहीं खाता हूँ तो ठीक रहता है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, क्या करूँ?
0: हाँ, असल में जो इन्होंने बताया कि गाल रिमूव हो जाने के सूरत में जो लीवर का जूस हमें चाहिए, बाइल जूस जिसे कहते हैं, उसके ज़्यादा ज़रूरत भर ना मिलने की वजह से ये होता है कि जो एसिड है ना वो बेस में तब्दील नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, किसी को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एसिड बेस का बैलेंस जब नहीं रहेगा बदन में तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है। इसमें जो दवा इनको इस्तेमाल करनी है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर जगह मिल जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से फ़ायदे में रहेंगे। वो ये है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीदुल वर्द, तो दबीदुल वर्द जो है ये 5 ग्राम, और ऊपर से जो है अर्क कासनी अर्क मको 15 15 ml, ये खाली पेट सुबह नाश्ता के पहले शाम खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये है कि शाम को सोते समय इन्हें चाहिए कि उस वक्त जवारिस शाही 1 चमचा शाम यानी डिनर के बाद ले लिया करें। ये तो बिफोर है माजून और अरक, और इसको लेना हमें आफ्टर
1: डिनर।
0: डिनर तो ठीक रहेगा इनको।
1: एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को।
0: हाँ भाई, बहुत शुक्रिया
3: नमस्कार,
0: आपका,
3: नमस्कार।
0: थैंक यू।
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव
0: जी जी जी
2: करनाल है जी।
0: जी
1: जी बताइए।
2: अच्छा सर, मेरा भाई है छोटा मेरे से, उसकी 42 साल उम्र है, और उसको जो है ना भूख नहीं लगती, और वो 2009 से यानी 17 साल से मेंटल इलनेस की दवाई खाता है सर, और रोटी बिल्कुल नहीं खाता, ठीक तरह से नहीं खाता, मतलब थोड़ी बहुत ही खाता है जी, तो क्या किया जाए उसको? और मेरी प्रॉब्लम, मैं भी अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ सर।
0: ठीक है भाई, के लिए जो है आप जो है जवारिश तमर हिंदी ले लीजिए, जवारिश तमर हिंदी, तमर TMAR तमर, यानी ता मारा, जवारिश तमर हिंदी, ये आधा आधा चमचा सुबह शाम खाली पेट उनको दीजिए, और खाने के बाद उनको हब्बे कबीर नौशादरी दीजिएगा, दो दो गोलियाँ। आवाज़ शायद इनकी अब
1: आवाज़,
0: डिस्कनेक्ट हो
1: हाँ
0: गई है। बहरहाल वो भाई के वो उनके हमने बता दिया, वो दवाओं की जो खुश्की होती है, जो अंग्रेज़ी दवा हम खाते हैं आमतौर से, उसकी खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। खैर तो ये दवा जो है, जो हमने उनको बताया, तो उससे उनको राहत मिलेगी।
1: आज रेडियो डॉक्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समर डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस पर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं क्या जिन्हें लोग आसानी से अपना सकते हैं जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, इस पर हम और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। इस पर अभी हम जानेंगे कि यूनानी मेडिसिन में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: सलामुलिकुम।
3: जी वालेकुम सलाम।
2: हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
3: शुक्रिया साहब, फरमाएं।
2: सर मेरे अभी करीब एक साल हुआ तो मेरे वो निकल आई थी हरफीस।
3: जी जी।
2: तो मैंने ये आपके जो यूनानी से ही दवा खाई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, एक साल हो गया।
3: जी जी।
2: तो ये दाने दाने से थे, तो इसमें हमारे लिए उन्होंने एक तो मरहम लिखा था। मरहम है सफेद काफूरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक।
2: और एक इसमें था हमारा ये शरबते उन्नाब।
3: जी।
2: और एक थी इसमें माजून दवद दबुल दर्द।
3: माजून दबीदुल वर्द था, ठीक है।
2: जी हाँ, ये तीन चीजें थी सर। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे ये गर्मी पड़ी है मुझे, इसमें खुजली सी दोबारा लगने लगी है, क्यों फिर ये दोबारा यही दवाई खाई?
3: नहीं, अब आप माजून उशबा ले लीजिए।
2: माजून
3: उशबा।
2: मुशबा। अच्छा
3: उशबा। ऊ बड़ा शाह और बा उशबा।
2: हाँ मुशबा। अच्छा
3: माजून उशबा हो जाएगा, और साथ में जो है शरबत उन्नाब लेते रहिएगा।
2: जी जी जी।
3: और अगर कहीं आपको
2: जी
3: नीम के फूल मिल जाए, फूल
2: नीम के,
3: हाँ, या नीम का तेल मिल जाए।
2: जी जी।
3: तो ज़्यादा अच्छा है, नीम के तेल इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिल जाता है।
2: अच्छा हाँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ गाजियाबाद गया था, वहाँ यूनानी बहुत अच्छा अस्पताल है, वहीं से ही दवा चली थी मेरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक है, गाजियाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन।
2: जी जी हाँ हाँ,
3: तो वो है, बहुत अच्छा है, वहाँ से आपने सही जगह आप गए, और जाहिर है कि भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यूनानी का।
2: जी मैं हाँ उसी से ही मुझे बताया था उस टाइम में किसी ने कि भी वहाँ चले जाओ।
3: नहीं, नहीं, अच्छा किया, और फिलहाल आप नहीं ले लो, काफी रहेगा।
2: ठीक है जी, शुक्रिया जी। और आप आते हैं जी डॉक्टर के उसमें, यहाँ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को जानकारी।
3: जी, इसमें आकाशवाणी का बेहद शुक्रिया।

0: हाँ जी, जितने भी हमारे साथी सुन रहे हो भाई, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं दोनों डॉक्टरों और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
0: जी।
1: वो पूछते हैं कि यूनानी चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए क्या खान पान व कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
2: जी, काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया। हालांकि आज का प्रोग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, लेकिन जाहिर है कि इससे रिलेटेड भी है, तो खाने पीने में ख्याल रखें, समय से खाएं और नींद पूरी लें। इसके लिए एक खमीरा आता है, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदे सलीब वाला। एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदे सलीब वाला। ये रोज़ाना 5 ग्राम सोते वक्त इस्तेमाल करें और सुबह सवेरे जो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाले आधा चमचा, इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 6 महीना कीजिए। इससे काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और दिमागी तवाज़ुन भी अच्छा बनेगा। और यह है कि खाने पीने में ख्याल रखें, कब्ज़ ना होने पाए और गैस कम बने। आप जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है एक उम्र के साथ कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या फ़ायदा कर रही है। उसी लिहाज से अपना खाना पीने का चयन करें तो अच्छा रहेगा।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड बर्निंग मिच्यूरेशन के लिए यूनानी चिकित्सा बताएं। अनिल, गुरुग्राम से।
2: जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शुगर पेशेंट हैं या बहरहाल, अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनके लिए शरबत बजूरी SF के नाम से आजकल आ रही हैं, कुछ कंपनीज बना रही हैं जो शुगर फ्री है। लेकिन जो शुगर फ्री, जिनको शुगर नहीं है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की हर जगह मिल जाएगी। दो दो चमचा सुबह शाम, नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है माजून दबीदुल वर्द, ये सुबह शाम में लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम, और बिफोर ब्रेकफास्ट जो है माजून फलासफा 1 चमचा इस्तेमाल करें। तो इससे कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि माजून दबीदुल वर्द के साथ साथ जो है वो अरक कासनी, अरक मको और अरक ब्रंजासा भी इस्तेमाल करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब नमस्ते, हमें गैस बहुत बनती है और पेट गुड़गुड़ करता है, क्या करें। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से।
3: पहली बात तो ये देखिए कि आप खाने पीने में कैसे खा पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम ये हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें खा रही हैं जिससे गैस ज़्यादा आपको बन रही है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक तो हब्बे कबीत, सुबह शाम दो दो टेबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं आप। और जवारिश में आप जवारिश शाही ले सकते हैं, आधी आधी चम्मच सुबह शाम। और एक टेबलेट और ऐड कर सकते हैं, हब्बे हल्दी जो कि हींग की गोली होती है, दो दो टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। और पानी का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं नमस्ते, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड FM रेनबो टीम को, मैं नीता अमरावती से। ये लिखते हैं, मैं FM रेनबो के प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परेशानियों का इलाज हो सकता है और सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये कहते हैं कि इनको है ना अलग अलग भाषा का, मतलब अलग अलग स्टेट्स का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ने डर भी लगता है कि सुबह का खाना शाम को खाती हैं तो कभी कोई बीमार ना पड़ जाए। तो के ऐसे में हम क्या करें कि जिससे बीमार ना पड़े और सही रहें।
2: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है इनका। और जाहिर है कि अगर उनका पेट ठीक है तो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं वो। इन्होंने जैसा कि काफ़ी सैलानी टाइप का सवाल किया इन्होंने, तमाम सारे स्टेट्स के अलग अलग फूड्स हैं, तो अच्छी बात है, इनको तजुर्बा भी अच्छा है। लेकिन यही ख्याल करें कि हर इलाके का जो भी, वो कहते हैं ना कि एक रवायती खाना जिसे कहते हैं, जैसे बिहार में चले गए आप तो वहाँ के लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, तो यकीनन वो बड़े काम का होता है।

0: और लोग खाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत मशहूर है, ये मज़बूत खाना भी है। उसमें यह है कि घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, घी का इस्तेमाल कम किया जाए। और रहा सवाल ये कि दिल्ली तो यानी समझिए कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ तो हर तरह का खाना मिलता है, तो उन जगहों पर खाना खाया जाए। अगर कोई आदमी टूर पर निकला हुआ है तो सोचे कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, तो वो ख्याल रखें कि जिस जगह होटल पर भीड़ ज़्यादा हो उन होटलों पर खाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है, वहाँ आम तौर से महसूस कर लिया जाएगा कि ज़्यादा
1: लोग खा चुके हैं
0: खा
1: या खा
0: चुके
1: रहे
0: हैं और
1: हैं।
0: खा रहे हैं, ताज़ा हो रहा होगा, ज़रूर खाना ताज़ा मिलेगा।
1: ये तो आपने हमें बताया कि जनरल में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बचाव के लिए यूनानी उपचार कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि बच्चे क्योंकि दिन भर काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, बाहर गर्मी में खेलते भी हैं, तो उनके बचाव के लिए क्या करें।
2: उनको जब भी देखें कि ज़्यादा बाहर से खेल के आए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा उनको थकान है कुछ है, तो कुछ घर में ऐसा ड्रिंक बना लें जैसे शुगर है, नमक है, लेमन है, ये चीज़ें बना के उनको ये दें। और इसके अलावा हमारे पास शरबत होता है, शरबत अनार है, आंवला है, आंवला है, शरबत आंवला एंड शरबत अनार ये दे सकते हैं। और एक ड्रिंक बना के रखें, जैसे जिसको ORS की ही उसको एक शक्ल कही जाएगी, जिसमें कि लेमन है एंड नमक एंड शुगर मिला के थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ डाल दें, उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं उसको पानी में डाल के। आंवले का शरबत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा इस वक्त, उसको भी दें। और इसका भी बहुत, अगर उसको कभी ऐसा लगे कि हाँ लूज मोशन या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तो शरबत बेलगिरी भी ऐड कर सकते हैं, दो दो चम्मच। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर बेहतरीन रहेंगी। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वही वही चीज़ जो हमारे पास जवारिश तमर हिंदी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है, और हींग की गोली आती है जिसको हल्दी बोलते हैं, है ना, उसको दो दो गोलियाँ दे सकते हैं, उसके लिए बेहतर होगा। पानी वक्त पे पिए और शरबत आंवला और शरबत अनार ये सब चीज़ें लेती रहे, इससे बहुत बेहतर
1: और
2: बेहतरीन रहेगा।
1: बुज़ुर्गों के लिए क्योंकि कई बार तो एकदम सर्दी होती है, कई बार एकदम गर्मी होती है, तो बदलते मौसम में कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बुज़ुर्ग क्या करें।
2: बुज़ुर्गों के लिए तो भी यही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें हमें लीवर की मेडिसिन थोड़ा ऐड करके रखना चाहिए। बुज़ुर्गों के लिए माजून दबीदिवर देना चाहिए उनको, जवारिशे पुदीना विलायती देना चाहिए, एंड यही जैसे गोंद कतीरा है, चिया सीड, इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा शरबत बना के वो लेते रहें, पीते रहें। गुड़ का भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इन सारे शरबतों में। शक्कर ना यूज़ करके, शुगर ना यूज़ करके गुड़ का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी।
1: एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, सर मुझे गर्मियों में लूज मोशन की शिकायत रहती है 15 दिन में, तो सर यूनानी चिकित्सा में कोई इसका इलाज है।
0: जी काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। एक तो यही है कि जवारिश अनारायण का इस्तेमाल ये सुबह नाश्ता के पहले आधा चमचा सादे पानी से कर लें, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। और चूंकि गर्मियों में ख़ास तौर से उनको शिकायत रहती है तो खाने का ख़ास ख्याल रखें, उसमें बाहर की तली हुई चीज़ें जो आजकल फैशन में मोमोज़ वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, जंक फूड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। और जो सीज़न में कुदरत ने हमें दिया है, आम का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, अनार है, ये सब इस्तेमाल करें, अनन्नास है, इसमें जो उनको मिल जाए आसानी से कोई एक फल ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये जो मौसमी फल है ना, कुछ तो सदाबहार फल है, जैसे अनार है हमेशा मिलता रहता है, पपीता हमेशा मिलता रहता है, अनन्नास है ये भी आमतौर से मिलता रहता है, ये सब डाइजेस्टिव भी हैं और काबिज़ भी हैं, तो उनको जो लूज मोशन शिकायत दूर हो जाएगी इससे। इसके अलावा यह है कि वो एक गोली रात को सोते वक्त हब्बे सुमाक, सु मापरा का और का सुमाक, एक गोली रात को सोते समय ले लिया करें, ये बहुत काफ़ी उनके लिए रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सूफिया हुसैन ने बहुत सारे मशरूबात का जिक्र किया है, शरबत आंवला है, शरबत अनार है, सब इस्तेमाल करें बहुत फ़ायदा रहेगा। शरबत बेलगिरी है, ये काफ़ी हमारे यहाँ चलन में है, लोग यूज़ करते हैं, बेल का मुरब्बा भी लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा सा ले लिया, ज़्यादा लेकिन ना लें, ये ख्याल रहे।

0: चूंकि इन सब का मिजाज ठंडा होता है, तो ज़्यादा ले लेने में ये नुकसान होगा कि हमें बदन में दर्द भी हो जाएगा और जॉइंट वालों को ख़ास तकलीफ़ पड़ जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा ली जाए। कितना लेना है ये ज़रूरी है जानना, 10 ग्राम ज़्यादा ना होने पाए।
1: सही मात्रा में लेना भी आवश्यक है।
0: जी जी
1: जी, एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हाय हेयर डॉक्टर रिंकू, मैटरनिटी होम मुनिरी का याददाश्त बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में दवाई है सर, तो बताएं।
0: बहुत अच्छी दवा यूनानी में है। एक तो खमीरा गावजवान अम्बरी जवाहर वाला, ये सुबह सवेरे रोज़ाना इस्तेमाल करें वो। और अगर ये महंगा लगे तो इसका खमीरा गावजवान सादा भी आता है, तो सुबह नाश्ते से पहले एक चमचा इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें एक अदद अखरोट का इस्तेमाल करें। ये एक अखरोट रोज़ाना यूज़ करना, एक से ज़्यादा नहीं। या 5 बादाम रात को भिगो दिया, सुबह छील करके उसका छिलका निकाला, फिर उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब को खाने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि अब ये मौका तो लोगों के पास है नहीं कि सील पर घिस करके इस्तेमाल करें।
1: जी
0: हालांकि बादाम घिस कर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा, बड़ी फुर्सत रहा करती थी, तो चलिए कम से कम, अगर इतना मौका नहीं है तो देर तक उसे चबाएं। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल करें तो इनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन यूनानी में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत आम दवा है जो हर जगह मिल जाएगी, दवा भी और ड्राई फ्रूट भी।
1: ये तो आपने बताया कि क्या हम ले। एक मैसेज हमारे पास आया, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं, पेट बहुत भार हो गया है। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
0: ओ, एक तो यह है कि इन्हें जो नॉनवेज है उसका इस्तेमाल कम करना है। इसी के साथ जो है, कटहल, गोभी, बैंगन, अरवी, राजमा, उड़द, पूड़ी पराठे, इसका इस्तेमाल भी कम करना है, जितना कम हो अच्छा है। दूसरे, सफूफ मुहज़्ज़िल और अर्क ज़ीरा, ये सुबह सवेरे नाश्ता से पहले, जब भी नाश्ता करने बैठें पहले इसको इस्तेमाल करें। 1 चमचा सफूफ मुहज़्ज़िल और ऊपर से 4 चम्मच, बड़ा 4 चम्मच ज़ीरे का पानी, वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके अलावा यह है कि ये खाने में सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है, हब्बे कबीर नौशादरी 2 गोली इस्तेमाल कर लिया करें, इससे उम्मीद है। और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें,
1: जी
0: सलाद या मौसम का कोई फ्रूट, जो फ्रूट इनको अच्छा लगे वो खा लिया करें।
1: लेकिन जैसे कि कई लोग होते हैं कि डायबिटिक हैं और साथ में उनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे, तो वो क्या करें, क्या लें, अगर डायबिटिक भी है और अल्सर भी है, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन की भी कई बार शिकायत आ जाती है साथ में।
2: उसमें आप, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है अल्सरेशन के लिए। एक तो अगर आपको माउथ में हुआ है, अगर माउथ में हुआ है तो हमारे यहाँ ज़रूर कुला करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं। अर्कियात भी ले सकते हैं, इसमें अर्क मको और अर्क बादियान, अर्क कासनी, वो ले सकते हैं, उससे से बहुत अच्छा।
1: और अगर पेट में अल्सर है डायबिटिक के साथ,
2: उसमें भी अर्कियात का असर, अर्कियात का ही इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि उसमें हम मीठी, ये दवाइयाँ हमारी मीठी होती हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, या तो टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, या फिर जो है अगर उसको नहीं है शुगर तो फिर तो उससे मीठी दवा दी जाएगी। इसमें कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं हम, जिगरीन हमारे पास बहुत अच्छी आती है ना, और बाकी हबे कभी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम शरबत के भी उसमें दे सकते हैं शक्ल में। अगर शुगर है तो फिर सिर्फ अर्कियात पे डालेंगे एंड टेबलेट पे डालेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो मैं उसमें माजून और जवारिश भी ऐड कर सकती हूँ, है ना। माजून दबीदुलवर्द का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए अर्क के साथ अर्क अजीब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी
1: तो कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को नहीं लग रही होती है, और किसी को डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो उन तीनों केसेस में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए यूनानी चिकित्सा क्या है?
0: हाँ, यूनानी में असल में अगर वाकई भूख नहीं लग रही है तो हम उसका काज देख

हैं कि क्यों नहीं लग रही है, लीवर में गड़बड़ी है या उसके आंतों में गड़बड़ी है, पेट में कोई ख़राबी है, एसिडिटी ज़्यादा है वगैरह। इसमें हमारे यहाँ जैसा कि बताया, जवारिस तमर हिंदी के साथ एक गोली आती है, हब्बे कुर्स तुरशे मुश्तही, तुरशे मुश्तही कहते हैं उसे, मुश्तही मतलब इश्तहा यानी भूख लगाना, वो गोली होती है, खाना खाने के बाद दो दो गोली देते हैं उसको। इसके अलावा हम मेन कास्ट पर जाते हैं, ये देखते हैं उसको असल वजह क्या है भूख ना लगना, तो वो भी दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दवा जो है, जैसे कि दवाएं वो दी जाती हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए

0: गुजरे, थोड़ा आराम मिले। क्यों हुआ वो बाद की चीज़ है, वो देखा जाएगा। तो ऐसे ही है, भूख ना लगना ये एक बीमारी है, एनोरेक्सिया। सीधी सी बात है कि उसका हमें काज देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। जिगर कमज़ोर में आमतौर से ऐसा होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो देखना ज़रूरी होता है। हमारा खाने की जो सोचना ही चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वो मुँह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो उससे सलाइवा लार, सराल या लार जो भी बोलते हों लोग अपने ज़बान में, इलाके वाइज मशहूर है। तो जब हम, इसीलिए कहा गया खाना चबा चबा के खाओ, तो जो कुछ हम खाएंगे तो देर तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन भी अच्छा होगा और लपेट भी देगा उससे, तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यहीं आधा डाइजेस्ट हो गया सह लीजिए, फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर, स्टमक में। स्टमक में जो जाते ही जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो उस बाहर से आए हुए फूड को, हमारे जो भी हमने खाया इनटेक किया, उसको जो है वो क्या करता, दो काम करता कि अगर ख़राब है किसी किस्म वजह से तो उसको तेजाबियत में लग रख करके यानी शुद्ध कर देता है, जैसे आग जला देती है, ऐसे ही उसका काम यही है। दूसरे सड़ने से बचाए, ये दो काम है तेजाब का, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यानी आप मैदे में निकलती खाते फौरन कुदरती तौर पर, जैसे हमने मुंह में रखा निवाला, ऑटोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, सलाइवा आ गया, ऐसे ही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, तो HCl वो निकलना शुरू हो जाता है।
1: तो कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिन्हें हर कोई अपना सकता है और अपना कर दुरुस्त रह सकता है, डॉक्टर सूफिया?
2: आदमी खाने पीने का ख्याल रखे और फ्रेश खाना खाए, रात का रखा हुआ या कई दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा लीवर अगर सबसे बेशकीमती है तो उसको अच्छा बना के रखेंगे, उसी से सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं पेट की। तो नुस्खों में तो आप ये है कि जवारिश वगैरह ही दे सकते हैं एंड मक्को दे सकते हैं, सफ़ूफ़ हाजिम हमारे पास एक बहुत अच्छा आता है, नमक शेखुल रईस बहुत अच्छा आता है जो कि आप सलाद पे डाल के खा सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल अच्छे से करें आप, और खाने का जो भी खाना आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए, उसके अलावा उसमें मिर्च मसाले का बहुत परहेज़ होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें जो घर में चीज़ें हों उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
1: और डॉक्टर सैयद आप कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अपने डाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि क्या खाएं क्या ना खाएं वो तो सब बता दिया
0: जी,
1: लेकिन डाइजेशन मजबूत कैसे बनाएं?
0: बस इसमें ये ख्याल रहे कि हमारा लीवर जो है, जो सदियों से हुक्मा ने ये सिफारिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए लीवर यानी जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। इसके अलावा जो है आदत में किसी दवा का इस्तेमाल ना रखें, लेकिन ज़रूरत पर सफ़ूफ़ हाजिम ये बना बनाया भी आता है, हम बना भी सकते हैं घरों में, जैसे उसमें जो अहम जुज़ है वो है सौंफ का, अजवाइन का, ज़ीरे का, ज़ीरा दो तरफ सफ़ेद और काला होता है, दोनों ले लिया जाए, नमक काला हो, और जो हम नमक खाते हैं नमक खुरदनी कहते हैं उसे, नमक लाहौरी, इन सब का मिक्सचर बना करके हम वज़न कहते हैं बराबर बराबर, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया सबको, उसमें काली मिर्च है वो ले ली जाए, इसका एक पाउडर बना के रख लें हम, तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा, ये हम इस्तेमाल करें, और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
1: वैसे समय हमारा जाने का हो गया है, लेकिन चलते चलते एक मैसेज हमारे पास आ गया है तो मैं शॉर्ट में आपसे लेना चाहूँगी कि वो लिखते हैं कि सर एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से निकाला जाता है, यूनानी मेडिसिन में कोई दवाई है जिसकी गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाता हो या ख़त्म हो जाए?
0: असल में
1: रिकू सिंह,
0: हाँ ये बहुत सही सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है। इसमें चूँकि यूनानी में जो है हम दवाएँ जो देते हैं वो लीवर के इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ये सर्जिकल केस असल में है,

0: इसलिए हम इसको रेफर कर देते हैं ताकि इलाज बिलियर के तौर पर यानी सर्जरी उसकी आसानी से हो जाए और उससे फ़ायदा उठाए वो।
1: तो वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते एक लाइन में संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या देना चाहेंगे डॉक्टर सैयद? आप बता दीजिए संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए काफ़ी अच्छे सवाल आता है और मुख्तसर बात यह है कि हमने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि सादा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, समय से खाना खाएं और समय से सोएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुश रहें और खुश कभी रहें जब सेहत हमारी अच्छी होगी।
1: और डॉक्टर सूफी आप क्या संदेश देंगी?
2: मेरा भी यही कहना है कि खाना फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, वर्जिश करें, नींद अच्छी लें और खुश रहें।
1: तो दोस्तों, धूप की गर्मी पर हमारा बस नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में ज़रूर है। तो पानी भरपूर पीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट रहेगा दुरुस्त तभी ज़िंदगी रहेगी मस्त। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट, और डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिन, CGHS। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
2: आपका भी बहुत
0: आकाशवाणी
2: शुक्रिया।
0: का।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर की एक सतत यात्रा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: डुके डाके डुके आओ आओ, इतना शोर क्यों मचाया बताओ आओ।
1: मिकी माउस,
2: ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मेरे साथ बोलिए मिस्का मस्का मिकी माउस।
3: क्या बात है
4: ओड़ी बाबा, मिक्री का तो मैं को आशा का तो जो रहा है।
5: ओए युवराज मेरे भाई मेरे यार, ओए तू बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। ओए ऑल इंडिया रेडियो वाले तो तेरे को बुला के तेरी तो टावर ही बना दी हुए। ओए ऑल इंडिया रेडियो वाले तो बहुत ही अच्छे है यार।
4: अच्छे अच्छे लोग क्या सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी सुनते हैं वर्खोदार।
3: क्या बात है, मैं लग रहा है सारे लिसनर्स ने बहुत एंजॉय करी होगी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस।
1: मैं एक्चुअली खुद ने खुश नसीब समझदा कि मेरे राही किसी के चेहरे पे मुस्कान आई है।
3: बिल्कुल, मैं लगता है कि सब तो वड्डी खुशी, सब तो ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती उदो है जदों तुहाडे थ्रू कोई लोग या कोई भी पर्सन या काफी सारे लोग तुहानू देख के तुहानू सुन के खुश होन या तुहाडे थ्रू खुश होन। सो बेसिकली आप आने अपनी वॉइसिस ते, ए तो ऑगेन द कॉकरोचेज हो गया, बट इस तो इलावा कार्टून तो इलावा केड़ी ऐसी वॉइसिस हैं जो तुहाडे दिल के बहुत करीब होन? या जैसे कि फर्स्ट वॉइस सी रोहित दी जदों तुसीं मूवी देख रहे सी, बेसिकली बॉलीवुड करैक्टर्स, जो तुम बाकी सारे बॉलीवुड करैक्टर्स की आवाज़ा कढ़निया शुरू कीतियाँ, उस चीज़ से पकड़ बना के रखना या फिर उस चीज़ को अगे वधाना, उस चीज़ को अगे लैके जाना, एक एज अ प्रोफेशन उन्होंने चूज़ करना, वो जर्नी किमें स्टार्ट हुई थी, तुम किमें डिफरेंट डिफरेंट वॉइसिज शुरू कीतियाँ कढ़निया? क्योंकि एवें नहीं होंगे कि सबकी आवाज़ कढ़ना एक छोटा जा काम है, ईजी वर्क है, इन दिस भी मैं लगता प्रॉपर रियाज की जरूरत तो होंगी होगी, तो वह किमें शुरू की?
1: रियाज इतने सब तो वाला रोल प्ले करता है, तुम किसी भी कला का हिस्सा हो, हर पासे रियाज ही तुहानू परफेक्ट बनाता है। तो अगर गल करिए मिमिक्री की, मिमिक्री विच दिमाग नू रिलैक्स रखोगे तो तुसी परफेक्ट हो पाओगे।
3: बिल्कुल,
1: क्योंकि तुहाडा जो दिमाग है तुहाडे पूरे शरीर नू कंट्रोल करता है।
3: बिल्कुल,
1: मैं सिर्फ एक आवाज़ मिमिक करता सीगा जदों मैं स्टार्ट किया, अज मैं 30 वॉइसिज मिमिक कर सकता, इंकलूडिंग कार्टूनस, इंकलूडिंग बॉलीवुड आर्टिस्ट।
3: क्या बात है,
1: और 30 विचों कुछ हैवी टोन भी होणगियां, कुछ लो टोन भी होणगियां, वह सिर्फ रियाज ही तुहानू करवा सकता है। दूजी गल, तुहाडी अखां ते कन्न तेज होने चाहिए, सुनने वाले नूं लगेगा कि मिमिक्री च अखां ते कन्न दा की काम
3: जी,
1: अखां नाल देखना, कन्नां नाल सुनना,
3: ऑब्जर्व करना,
1: ये चीज़ जरूरी है। तुसीं किसी करैक्टर नूं किस तरह पकड़दे हो ते उहनूं किद्दां अपने दिमाग में बैठा लैंदे हो
3: जी।
1: मिमिक्री एक ऐसी इमेज बन चुकी है, सब नूं लगता है कि आवाज़ां नूं कॉपी करना
3: जी,
1: बट मिमिक्री सिर्फ आवाज़ां नूं कॉपी करना नहीं होंदा। अगर तुसी सर्च करोगे व्हाट इज मिमिक्री, ते यू विल गेट टू नो कि किसी भी एक्शन नू कॉपी करना मिमिक्री होंदी है। तुसी किसी दी आवाज नू कॉपी कर सकते हो, किसी दे अंदाज नू कॉपी कर सकते हो, किसी दे तौर तरीके नू कॉपी कर सकते हो।
3: बिल्कुल,
1: मिमिक्री विच अगर मैं किसी दी आवाज कॉपी कर रहा ते ओदे नाल नाल मैं ओदा गेटअप ते ओदी लुक भी कॉपी कर लवां, ते मैं उस करैक्टर नू परफेक्टली अदा कर पाऊंगा,
3: प्रॉपर उस करैक्टर नू खुद जीना, अपनी पर्सनैलिटी भुल के सिर्फ अपने आप नू वार वार यही कमांड देना, अपने दिमाग च चीज बिठाना कि एक कोई होर पर्सन नहीं है, मेरी ही पर्सनैलिटी है।
1: बिल्कुल, अगर मैं रोहित मेहरा नू मिमिक करना है कोई मिल गया वाले नू, ते मैनू खुद नू पहले एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं ओदी तरह एक बच्चा वा
3: जी,
1: ते मेरे दिमाग च अगर बैठ गया कि मैं एक बच्चा वा, तो मेरे गलों आवाज़ मेरी बच्चों वाली निकलनी चाहिए है, जिदा कि रोहित मेहरा की है
3: जी।
1: बट अगर मैं मिमिक करना है गुलशन ग्रोवर साहब नू, उन्होंने आवाज़ भारी है, तो मैनू पहले खुद ने रियलाइज़ करना पाएगा, खुद के दिमाग च बिठाना पाएगा कि मैं एक जोरदार विलन हाँ, जिदी आवाज़ विच बहुत दम है, जिदी आवाज़ सुन के सामने वाला थर थर कंब जांदा है। तो अगर मैं अपने दिमाग में उस छवि नू बिठा लिया, तो फिर मैं उस आवाज़ नू आसानी नाल मिमिक कर पावांगा। उस कैरेक्टर नू जे असी आसानी नाल फील कर लईए, वो साडे वास्ते एक सब तो वड्डी थैरेपी ते सब तो वड्डी एक्सरसाइज है।
3: ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਇਸਿਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਵੋਇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 30 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ।
6: ਅਭੀ ਨਾ ਜਾਓ ਛੋੜ ਕਰ

0: क्या बात है, मैं लगता है सारे जिन्ने भी साडे लिसनर्स सी ना सारे ने बहुत अच्छी तरह एंजॉय करया होगा गाना ते थोड़ी आवाज दा वीडियो तुसी सारे ने कट के सुना रहे फिर चाहे कार्टून जोन या बॉलीवुड वॉइसेस जोन वो सारे भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो बेसिकली आपां गल करिए स्टेज परफॉर्मेंसेस दी, अपने आप नु इंट्रोड्यूस कराया एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, वो मोमेंट की सी, वो फीलिंग की सी?
1: फर्स्ट टाइम खुद नु मिमिक्री आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कीता सीगा अपनी स्कूलिंग तो बाद कॉलेज ज्वाइन करके। कॉलेज टाइम तक मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस कीतियां सी बट कॉलेज के एनुअल फंक्शंस थे, पोएम रेसिटेशन या कुछ और।
0: बेसिकली ओमे की ओदो तक भी नहीं पता सी कि तुसी एक मिमिक्री आर्टिस्ट हो।
1: बिल्कुल, मैंने खुद क्लियर इमेज नहीं सी
0: जी।
1: एक बंदे ने खुद नु क्लियर इमेज होनी चाहिए कि मैं किस काबिल हां ते मैं की करना चाहना। सब तो पहले अपने दोस्तों नु इंट्रोड्यूस करते हैं
0: जी
1: कि ए देखो मैं ये कर सकता। सब तो वड्डा सपोर्ट ही तुहाडे दोस्त हुंदे ने।
0: मैं लगता है अज दे टाइम च तां सब तो ज्यादा प्रेशर ही बच्चे ते है कि असीं कॉलेज जा रहे हैं ते असीं अपने आप नूं इंट्रोड्यूस किवें करना है, कि अगर सानूं पुछणगे तैनूं आंदा की है ते की दसना है उहनां नूं। एक्साइटमेंट ही अलग हुंदी है जदों एक स्कूल गोइंग बच्चा फर्स्ट ईयर च जाएगा कॉलेज च एडमिशन कराएगा, वो अलग ही चीज़ां हुंदियां, एक्सपीरियंस ही अलग हुंदा।
1: एक्चुअली सब तो वड्डा चैलेंज है
0: जी।
1: जरूरी नहीं कि तुहानूं कोई कला आनी चाहिए है। कला किसी भी चीज़ की हो सकती है। तुसी पढ़ाई दे कलाकार हो सकते हो,
0: बिल्कुल।
1: तुसी घूमन दे कलाकार हो सकते हो,
0: बिल्कुल।
1: तुसी किसी नूं कीड़ा मैं हार्वर्ड जितना है ओदी ओ कला है,
0: बिल्कुल।
1: कि किदां हर्डल्स नूं ओवरकम करके किदां जितदा है। हर एक दी अपनी अपनी कला होंदी है, अपनी अपना एक प्लस पॉइंट होंदा है। तुसी उहनूं फड़ के रखो हमेशा, उहनूं कदे ना छड्डो, उह तुहाडी पहचान है। मैं मिमिक्री नूं अपनी पहचान बनाया क्योंकि मैनू पता सीगा कि एक चीज़ है जो मैनू रब वालों दिती गई है बिना मंगे।
0: बिल्कुल, मैं एवं लगता है कि जो आप गल करते ना कि टैलेंट या एक कला रब ने हर एक नू बख्शी है, तो उस कला की कदर करना, उस चीज़ नू पकड़ के रखना, उस चीज़ का रियाज करते रहना, वो सब तो मेन चीज़ है। तो उस कला की कदर तुसी इन एक्चुअल कर पाते हो कि जदों तुसी उन्हें प्रोपर टाइम दे रहे हो, उनके प्रोपर कदर कर रहे हो, उन्हें अच्छे तरीके नाल परफॉर्म कर रहे हो। जरूरी नहीं होंगे कि ऑडियंस का की परसपैक्टिव है या लोग की कह रहे हैं, तुसी खुद सैटिस्फाई होने चाहिए हो, मेन चीज़ आई आप मनते हैं। और फिर जो गल करिए आपकी जर्नी की, तो जर्नी जो थोड़ी शुरू हुई और तुम स्टेज परफॉर्मेंसिस कर शुरू कीतिया, तो वो कॉलेज तो बाद ऐसा मूमेंट से जो थोड़े फ्रेंड्स ने टीचर्स ने सब ने सपोर्ट किया या थोड़े मैंटोर से जिन्होंने तुम दसा कि नहीं एक अच्छा टैलेंट है तुम इन परज्यू कर सकते हो इन फ्यूचर?
1: हर एक का अपना एक ऐसा मूमेंट होंगे जो यादगार होंगे।
0: बिल्कुल,
1: मैं जलंधर के ही किसी कॉलेज परफॉर्म किया, मैं उत्थे मिमिक्री परफॉर्म करन नहीं गया सीगा। एक लिटरेचर एक्ट सीगा, मैं हैरी पॉटर का करैक्टर प्ले किया सीगा उत्थे। उस तो बाद स्टेज जदों खाली होया सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी सीगियां।

0: हाँ जी दोस्तों, तुसी प्रोग्राम सुन रहे हो जो वाणी, ते अगली जड़ी खबर असी तुहाडे लई लैके आए हाँ वह है PSSB लाइन सुपरिटेंडेंट की, जिस दे विच की टोटल 6 पोस्ट जड़ियाँ है वह निकलियां ने। इस दे विच क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे विच होना चाहिदा आ, ते पंजाबी तुहाडी इस दे विच लाजमी होनी चाहीदी आ। ते इस दे विच जिहड़ी तुहाडी एज लिमिट है वह 18 साल तो लैके 37 साल तक होनी चाहीदी आ। ते दोस्तों इसकी जिहड़ी इहनू अप्लाई करन दी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी सी 15 मई 2026 तो, ते लास्ट डेट इसकी बस 2 दिन रह गए ने, 5 जून 2026 तक इसकी लास्ट डेट आ। तो इस तो बाद जिहड़ा इसका सिलैक्शन प्रोसैस होगा वह रिटन एग्जाम के द्वारा होगा, जिमें कि जो MCQ क्वेश्चन होंगे ने होंगे, तो पंजाबी लैंग्वेज जिहड़ी है उसका क्वालीफाइंग जिहड़ा पेपर होगा। तो टैक्निकल सबजैक्ट जिहड़े कि इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरिट डिसाइड करते हैं वह होंगे, तो इस तो इलावा जिहड़ी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वह होगी।
1: बिल्कुल ललित, गल कर लें नैक्सट जॉब की। जी नैक्सट जॉब है वह फॉरैसट रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्रुप सी भर्ती 2026 की निकली है। कुल असामिया 91 ने, ते औदे जड़े ने फॉरैसट गार्ड, LDC, टैक्नीशियन, MTS आदि ने। योग्यता 10वीं 12वीं ITI या फिर ग्रैजुएशन होवे, उस औदे दे अनुसार तुहाडी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है। उम्र सीमा 18 तो 30 साल है, ते कैटेगरी दे लोकां लई उम्र सीमा विच थोड़ी जी छूट भी दित्ती गई है। ते तनखाह इस दी क्वालिफिकेशन दे अकॉर्डिंग रखी जाएगी। ते चोण प्रक्रिया जिहड़ी है वह लिखित होवेगी, स्किल टैसट होवेगा, ते दस्तावेजां दी जांच होवेगी, उस दे बाद ही तुहानू सिलैक्ट किया जाएगा।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जा सकता है। तो बिल्कुल जिन्होंने फरमाइश कोई भेजी हुई है, लास्ट फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी गीत प्ले कर दो जी। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर जी, पवन राजेश जी, अजय जी, राहुल जी, मनु बब्बर जी, और कह रहे ने कि अगली फरमाइश जी है वह भी कह रहे हैं कि पिंड बन्ना वाला हना हनवंता फाजिलका विनोद मायल सीमा लक्षिता यसीमा माता विद्या देवी सारा मायल परिवार कह रहे ने कोई भी गीत सुना दियो। और कोई भी गीत कह रहे ने राम सिंह जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय और राहुल, मनु बब्बर जी। और इसके अलावा जो साढ़े फरमाइश भेज रहे ने कह रहे ने कि मलोट सिंह कुलवंत, जसवंत सिंह गिल, रमन गिल जी, बलजीत गिल कैनेडा तो, दिशा मोहला जी, जगतार सिंह जग्गा धौला किंगरा तो, कह रहे ने कोई भी गीत प्ले कर दिओ। सो आओ इन्हां दी फरमाइश दे उत्ते 102.7 FM रेनबो दे उत्ते ए प्यारा जिहा गीत प्ले कर दिंदे आ, दैन फिर उस तो बाद अगले प्रोग्राम वल वधांगे जी।

नमस्कार, 102.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आरजे परविंदर।

कहते हैं कि शहर की रात और मैं नशाद और नकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गम ए दिल क्या करूं, ए वहशत ए दिल क्या करूं। और कहते हैं कि वो हाथ रख कर जो वो पूछे, दिले बेताब का हाल, हाथ रख कर वो जो पूछे, दिले बेताब का हाल, जो भी आराम तो देख कह दूं, मुझे आराम नहीं। 102.7 FM रेनबो पे शाम ए गज़ल।

कहते हैं कि दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, कि इस तरह बरसात का मौसम भी कभी आया ना था। कई बार होता है कि ऐसा गम घेर लेता है कि आप सोचते हैं कि अचानक ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तभी ये फरमाया जाता है कि दूर तक छाए थे बादल कि और कहीं साया ना था, कि मतलब दूर दूर तक कोई तब आस नजर नहीं आती। और फिर उसको बयां करते हुए कहा कि इस तरह का बरसात का मौसम, कि ऐसा गम तो मेरी जिंदगी में कभी आया भी नहीं था। 102.7 FM रेनबो, शाम ए गजल।

कहते हैं कि एक रोज खेल खेल में हम उसके हो गए, एक रोज हम खेल खेल में उसके हो गए, और फिर तमाम उम्र किसी के ना हुए। और कहते हैं कि कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे जाएं जाएं जिधर जाएं। 102.7 FM रेनबो, शाम ए गजल।

कहते हैं कि क्या कहूँ कि किस तरह से जीता था, गम को खाता हूँ, आंसू को पीता हूँ। 102.7 FM रेनबो, शाम गजल।

नमस्कार। रात के 10:30 बज चुके हैं। कार्यक्रम एक प्यार का नगमा है। 102.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है, जालंधर का आकाशवाणी का यह केंद्र। कहते हैं कि वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खो करके मेरी जाने जान, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि जब से तूने दीवाना बना रखा है, जब से तूने दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि तुम एक बार फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेकर हंस दो ना, आ जाएगा फिर से पलट कर वो गुजरा हुआ जमाना। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अजब मौसम है, मेरे हर कदम पे फूल रखता है। मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। मैं जब सो जाऊं तो इन आँखों पे अपने होठ रख देता है। यकीन आ जाएगा पलकों के तले भी दिल धड़कता है। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।